चुप भैया ना दरकारने भरतै बन देन भाई पुणे जाना करी जो सो दामना रे यो काम तमाशा करे कन्या बिकी करे हे चना सबाए हे चना रामी ता गए रामी के सब

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पद्री प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन् 2026 सेप्टेम्बर 8 तारिक भाद्र 23 गते मंगलबार द्वादशी तिथि अब स्तुति गरौं।
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।

नवश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नै परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस् सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस् श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस् सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर।
2: जय गाडे सा जय गाडे सा देव, जय गाडे सा जय गाडे सा जय गाडे सा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है। आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भारी।

की भक्ति गा रहूं हई, श्री कृष्ण बलराम सुंदर वृंदावन छोड़ेर न जाऊ हो रुंचनी मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुंदर वृंदावन।